Then Majalaya, long time we haven't read this Majalaya, Kuch Bhi Kar Sakun Main. मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। मजाल है कुछ भी कर सकूं मैं जो तू न तौफीक ऐ खुदा दे। तेरी मशीयत है सब पे गालिब, यह चहे सब मेरे इरादे।

दो जहां आलमे वजद में आ गए, जब्त सदके हुआ होश कुर्बान हुए, दो जहां आलमे वजद में आ गए, दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई, दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों दो जहां आलम में वजद में आ गए, दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई, बोथ द वर्ल्ड गॉट इन टू एक्सटेसी एंड जॉय, द हार्ट गॉट एंजॉयमेंट काइंड ऑफ एक्सटेसी हैप्पीनेस एंड द आईज गॉट फिल्ड एंड वेल्ड विद टीयर्स, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब्त सदके हुआ होश कुर्बान हुए, दो जहां आलमे वजद में आ गए, दिल को लज्जत मिली चश्म पूर्णम हुई, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थे जो लेने गए खुद कलीमे खुदा, थे जो लेने गए खुद कलीमे खुदा, फर्क ये है कलीम और महबूब में, थे जो लेने गए खुद कलीमे खुदा, फर्क ये है कलीम और महबूब में।

मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गया। बज़्म कौनैन जब संवारी गई, आसमानो जमी में सफ़े बिछ गई। अंबिया आ गए, मुरसली आ गए, मुक्तदी आ चुके तो इमाम आ गया। उनके दरबार अक़दस में जब भी कोई गमजदा आ गया, तिश्ना काम आ गया। थे जो लेने गए खुद कलीम खुदा, फ़र्क ये है कलीम और महबूब में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम हबीबुल्लाह। See, now this is the difference. That day he was called to go on to Kuhe Tur, and there he received the commandments. There he received the Torah. And Nabi alayhi salatu wasalam, he was Habibullah. Here in his own home, Jibreel alayhi salatu wasalam is coming with Kalamullah, verses and verses of the Quran Sharif. And then as we know that in the night of Mi'raj, all the Anbiya alayhimus salatu wasalam were first gathered. And then they're waiting now who is going to make the imamat. So the Jibreel alayhi salatu wasalam told Nabi alayhi salatu wasalam that now you will make the imamat to show the entire Anbiya alayhimus salatu wasalam and until the day of Qiyamah that he is Sayyidul Anbiya sallallahu alayhi wasallam. He is the leader and the master of all. So he said, when the muqtadis came away, and what kind of muqtadis also, Anbiya alayhi salatu wasalam. The muqtadi a gaye, to imam a gaya, sallallahu alayhi wasallam. Unke darbar aqdas mein jab bhi koi गमजदा आ गया, तिश्ना काम आ गया। गम गलत हो गए, मासियत धुल गई, मग़फ़िरत आफियत का पयाम आ गया। जिक्र साकी ये कौसर से ऐ हम नशी, जिक्र साकी ये कौसर से ऐ हम नशी, दिल को कुछ लज्जत ओ फरहत ऐसी मिली। जिक्र साकी ये कौसर

啦啊啦啊啦啊啦啊啦啊啦कैसा प्यारा नाम है आशिकों का मीना और जाम है अल्लाह जल जलालू अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह